गुजार की, वो जा रहा है कोई शबम गुजार की। वीरा है मैं कदा खुमो सावर उदास, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन ब।

0: फीफा विश्व कप 2026 विच मेजबान मैक्सिको ने अपने घरेलू दर्शकों के सामने प्री क्वार्टर फाइनल यानी कि राउंड ऑफ 16 विच जगह पक्की कर ली है। उधर नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर अर्लिंग हॉलैंड और फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बापे ने गोल करके अपनी टीमों नू भी प्री क्वार्टर फाइनल विच पहुंचा दिता है। फीफा वर्ल्ड कप दियां मुख सरगर्मियां दे नाल विश्व कप डेली अपडेट विच तुहाडा स्वागत है। SBS पंजाबी तो मैं सुमित कौर ते पेश है फीफा 2026 दे 20वें दिन दा स्पोर्ट्स रैप। दिन दी शुरुआत डैलस विच खेडे गए राउंड ऑफ 32 दे रोमांचक मुकाबले नाल हुई, जिथे नॉर्वे ने कोट दिवार नू 2-1 नाल हराया। पहले हाफ विच एंटोनियो नूसा ने नॉर्वे नू बढ़त दिवाई, दूजे हाफ विच कोट दिवार ने स्कोर बराबर कर दिता, पर आखिरी पलां विच हॉलैंड ने गोल करके नॉर्वे नू 1998 तो बाद विश्व कप नॉकआउट विच पहली जित दिवाई। हुण नॉर्वे दा सामना राउंड ऑफ 16 विच 5 वार दी चैंपियन रही ब्राजील नाल होवेगा। न्यूजर्सी विच फ्रांस ने स्वीडन नू 3-0 नाल करारी हार दिती अते राउंड ऑफ 16 विच प्रवेश कर लिया। कप्तान किलियन एम्बापे ने शानदार प्रदर्शन करदे होए 2 गोल जड़े। पहले हाफ दे अखीर विच उन्हां ने स्कोरिंग दी शुरुआत कीती। ए उन्हां दा विश्व कप नॉकआउट विच 9वां गोल सी, टूर्नामेंट दे इतिहास विच सब तो वध। दूजे हाफ विच फ्रांस ने एक होर गोल कीता अते एम्बापे ने अपना दूजा गोल करके गोल्डन बूट दी दौड़ विच बढ़त मजबूत कीती। हुण फ्रांस दा मुकाबला पैराग्वे नाल होवेगा, जिसने हाल ही विच जर्मनी नू फीफा वर्ल्ड कप 2026 तो बाहर करके वड्डा उलटफेर कीता। भारी मीह अते बिजली कारण 1 घंटे दी देरी तो बाद शुरू होए मैच विच मेजबान मैक्सिको ने इक्वाडोर नू 2-0 नाल हरा दिता। 80,000 तो वध घरेलू दर्शकों की हौसला अफजाई विच मैक्सिको ने पहले हाफ विच ही 2 गोल कर दिते। हुलियन क्विनोनेस अते राउल हुमेनेज ने गोल करके मैक्सिको नू 40 साल बाद विश्व कप नॉकआउट विच पहली जित दवाई। इस जित नाल मैक्सिको की अजेतू लड़ी भी 12 मैचा तक पहुंच गई है। हुण राउंड ऑफ 16 विच मैक्सिको का सामना इंग्लैंड अते डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो विचाले जेतू टीम नाल होवेगा। उधर ऑस्ट्रेलियाई टीम सोक्रूज डैलस पहुंच गई है, जिथे ओ राउंड ऑफ 32 विच मिसर यानी कि इजिप्ट दा सामना करन जा रही है। ऑस्ट्रेलिया अजे तक विश्व कप नॉकआउट विच अपनी पहली जित दी तलाश कर रही है। इस तो पहला टीम 2006 विच इटली अते 2022 विच अर्जेंटीना हत्थों बाहर हुई सी। मिडफील्डर आयडन हुस्टिच का कहना है कि टीम ने पिछले मैच तो अहम सबक सीखे हैं अते हुण ओ पूरी तरह तैयार है।
1: I think we can and I believe that we can get far. Look, you got to be ready. You got to enjoy it. That's the biggest challenge, right? You got to enjoy it. You can't forget to enjoy it. And I think this is one of the main things for us. You got to enjoy the moment and be ready for match day.
0: सोक्रूज अते मिस्र विचाले ए मुकाबला शनिवार सवेरे खेडिया जावेगा। सिद्धा प्रसारण सवेरे 3 बजे तो SBS अते SBS ऑन डिमांड ते वेख्या जा सकता है। तुसी सुन रहे सी फीफा वर्ल्ड कप 2026 दे 20वें दिन दा डेली अपडेट। SBS पंजाबी तो मैं सुमित कौर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 दे हर पल नू लाइव अते मुफ्त SBS अते SBS ऑन डिमांड ते वेखो ते माणो।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: नमस्कार दोस्तों, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है. आज 2 जुलाई 2026 की शाम, घड़ी में 5 बज चुके हैं और वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों और अहम अपडेट्स पर एक नजर डालने का. मैं हूं भव्या पांडे और आज के शो की शुरुआत हो इससे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुईवुरिंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद कर रहे हैं जिनकी भूमि पर यह कार्यक्रम सुना जा रहा है. तो मैं हूं भव्या पांडे, आप सुन रहे हैं SBS हिंदी का एक नया ताज़ा और दिलचस्प शो जहां आज हम बात करेंगे समुदाय की. तो आज के कार्यक्रम में कई दिलचस्प और अहम विषय आपके लिए लेकर आऊंगी. फीफा वर्ल्ड कप के 21वें दिन की पूरी अपडेट आज सुनेंगे. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड में एक ऐसा सवाल जो शायद आपके मन में कभी तो आया होगा, ऑस्ट्रेलिया में 3 झंडे क्यों हैं? राष्ट्रीय ध्वज के अलावा जो दूसरे झंडा आप देखते हैं वे किन समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है और उसके पीछे की कहानी क्या है, आज के कार्यक्रम में आपको बताऊंगी. इसके अलावा संगीत प्रेमियों के लिए भी आज का कार्यक्रम खास रहेगा. मशहूर सितार वादक भागीरथ भट्ट और इंडिया किंग के नाम से जिन्हें भी जाना भी जाता है हेमंत जोशी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया आए थे. इन दोनों कलाकारों ने SBS हिंदी से खास बातचीत

0: की है अपने संगीत के सफर के बारे में, तो आज हम ये सुनेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में आपको आज मिलवाऊंगी भारत की प्रख्यात साहित्यकार प्रतिभा राय से। उनके चर्चित उपन्यास यज्ञसेनी ने महाभारत को द्रौपदी के नजरिए से एक नई पहचान दी थी। इस विशेष बातचीत में उन्होंने महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, साहित्य और सामाजिक बदलाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे साथ अपने विचार साझा किए हैं, तो ये बातचीत भी आज आप तक लेकर आऊंगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि आज के शो से संबंधित कोई भी संदेश या सुझाव आपके पास हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। नंबर है 04397997667। और हाँ, अंत में कुछ बढ़िया से गाने भी आपके लिए लेकर आऊंगी, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ घंटों में आपका इंतजार कर रही हैं खबरें, कहानियां और बातचीत जो आपको दुनिया और अपने समुदाय दोनों से जोड़ के रखेंगी। प्रस्तुत है 2 जुलाई 2026 का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। मेलबर्न में एक 15 वर्षीय किशोर की मौत के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि किशोर को क्रेगीबर्न स्थित एक सामुदायिक मेडिकल सेंटर के बाहर गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। विक्टोरिया पुलिस के अनुसार हिरासत में लिए गए 16 वर्षीय और 19 वर्षीय युवक से क्राइम सेल के जासूस पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि वे घटना की परिस्थितियों की जाँच कर रहे हैं और फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। इसी बीच क्वींसलैंड के गोल्ड कोस्ट में एक संदिग्ध घर में आग लगने के बाद एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। आपात सेवाओं के अनुसार 84 वर्षीय व्यक्ति आग से बचने की कोशिश में गंभीर रूप से घायल हुआ था। इससे पहले दमकल कर्मियों ने घर के अंदर एक 38 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद किया था, जिस पर अधिकारियों ने कहा है कि आग लगने के कारण की जाँच जारी है और ये अभी स्पष्ट नहीं है कि ये हादसा था या किसी साजिश का हिस्सा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेनेजुएला की राजधानी काराकास और आसपास के क्षेत्रों में आए दोहरे भूकंप के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं। राहत और बचाव टीमें मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रही है, जबकि हजारों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मृतकों की संख्या लगभग 2000 तक पहुँच चुकी है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। हालांकि प्रभावित इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी चुनौती बनी हुई है। बात करें ईरान की, तो ईरान ने घोषणा की है कि वे संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निरीक्षकों को उन ठिकानों तक पहुंच नहीं देगा जो हाल ही में अमरीकी हमलों में क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये बयान ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने राज्य मीडिया को दिए एक हस्ताक्षर में दिए हैं। इस फैसले के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अमेरिका के ओहायो राज्य में 4 वयस्कों पर आरोप लगाए गए हैं, जब अधिकारियों ने एक घर से 16 बच्चों को बेहद खराब परिस्थितियों में बचाया। आपको बता दूं कि बच्चों की उम्र 1 से 18 वर्ष के बीच बताई गई है। अधिकारियों के अनुसार इस घर में बंद बच्चे कुपोषण और मानसिक आघात से जूझ रहे थे, जिनमें से कुछ अस्पताल में भर्ती हैं। मामले को बाल सुरक्षा से जुड़ा गंभीर उल्लंघन बताया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया नियमों को सख्त करने के प्रस्ताव पर ग्रीन्स और विपक्षी गठबंधन द्वारा समर्थन न दिए जाने पर अभिभावकों और सुरक्षा संगठनों ने निराशा जताई है। ग्रीन्स का कहना है कि प्रस्तावित कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है, जबकि समर्थकों का मानना है कि ऑनलाइन खतरे से बचाव के लिए कड़े कदम जरूरी हैं। वहीं फेडरल सरकार ने वृद्ध देखभाल सेवाओं के लिए आकलन प्रणाली में बदलाव किए हैं। पिछले साल लागू किए गए एल्गोरिदम आधारित सिस्टम को लेकर शिकायतें थीं कि इससे कुछ बुजुर्गों की जरूरतों का गलत मूल्यांकन हुआ है। ऐसे में सरकार ने कहा है कि इन बदलावों का उद्देश्य प्रणाली को अधिक सटीक और निष्पक्ष बनाना है। हालांकि आलोचकों का मानना है कि इस क्षेत्र में अभी और सुधार की जरूरत है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई परिवारों पर होम लोन का ब्याज बोझ हाल के वर्षों में सबसे ऊंचे स्तर के करीब पहुंच गया है। केपीएमजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में ब्याज भुगतान घरेलू आय का लगभग 5.9% रहा, जो कि 1979 से 1990 की आर्थिक मंदी के दौर के उच्च स्तर के करीब है। ऐसे में अर्थशास्त्रियों का कहना है कि लगातार बढ़ती लागतें घर खरीदारों के लिए दबाव बढ़ा रही हैं। बात करें भारत की तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर से दान की कथित चोरी के मामले में जांच तेज हो गई है। ऐसे में पुलिस का कहना है कि सबसे बड़ी नकदी चोरी 2025 की शुरुआत में आयोजित कुंभ मेले के दौरान की गई थी, जब श्रद्धालुओं की संख्या और दान में भारी वृद्धि देखी गई थी। अयोध्या पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी छोटी चोरी की घटनाओं में शामिल रहे और उन्होंने इसी अवसर का फायदा उठाकर बड़ी चोरी को अंजाम देने की कथित साजिश रची। इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों से लंबी पूछताछ की गई है और पुलिस का कहना है कि वे कथित रूप से इस पूरे नेटवर्क और योजना में शामिल थे। जांच एजेंसियां अब ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं और मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी थी या नहीं। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये आपने सुना आज का न्यूज फ्लैश। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि फीफा के 21वें दिन पर क्या कुछ हुआ, नबील हसन के साथ।
1: दूसरे हाफ के हीरो हैरी केन और यूरी टीलेमंस ने इंग्लैंड और बेल्जियम को राउंड ऑफ 16 में पहुंचा दिया, जबकि अमेरिका ने बोस्निया एंड हर्जेगोविना पर जीत के साथ आराम से अपनी जगह पक्की कर ली। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 21वें दिन के डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं नबील हसन। फीफा वर्ल्ड कप के 21वें दिन की शुरुआत अटलांटा में हुई, जहां इंग्लैंड ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को 2-1 से हराया। हालांकि शुरुआत में उनके खिलाफ 7वें मिनट पर एक गोल हुआ। इंग्लैंड पूरे मैच में अपनी लय नहीं पकड़ पाई और कॉन्गोलीज गोलकीपर ने कई शानदार बचाव करके उसे लगातार रोक दिया। थ्री लायंस को उस समय भी निराशा हुई जब रेफरी और VAR ने हैरी केन के बॉक्स में गिरने के बाद पहले हाफ के ठीक पहले पेनल्टी की अपील को खारिज कर दिया, लेकिन केन ने आखिरी फैसला अपने नाम किया और मैच के आखिरी हिस्से में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को राउंड ऑफ 16 में पहुंचा दिया, जहां उसका मुकाबला मेक्सिको से ऐतिहासिक एस्टेका स्टेडियम में होगा। बेल्जियम ने सिएटल में शानदार वापसी करते हुए सेनेगल को 3-2 से हरा दिया, जिसमें कप्तान यूरी टीलेमंस ने 2 गोल दागे। सेनेगल 86 मिनट तक 2-0 से आगे था, लेकिन बेल्जियम ने जोरदार वापसी करते हुए मैच को एक्स्ट्रा टाइम तक पहुंचा दिया। पेनल्टी शूटआउट की स्थिति बनने से पहले टीलेमंस ने लंबे VAR रिव्यू के बाद पेनल्टी हासिल की और 125वें मिनट में गोल करके जीत पक्की कर दी। बेल्जियम अब राउंड ऑफ 16 में अमेरिका से भिड़ेगा। अमेरिका ने बोस्निया एंड हर्जेगोविना को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली और 2002 के बाद अपनी पहली वर्ल्ड कप नॉकआउट जीत दर्ज की। फोलर एंड बालागन ने हाफ टाइम से ठीक पहले गोल करके टीम को बढ़त दिलाई, जबकि मलिक टिलमैन ने 82nd मिनट में फ्री किक से गोल करके जीत पक्की कर दी। बालागन को VAR रिव्यू के बाद रेड कार्ड दिखाया गया और अब वो अमेरिका के बेल्जियम के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाएंगे। आइए सुनते हैं अब सोकरूस की ताज़ा खबरें। सोकरूस ने डैलस में अपना पहला ट्रेनिंग सेशन पूरा कर लिया है, जहां वो शनिवार को होने वाले राउंड ऑफ 32 मुकाबले में इजिप्ट से भिड़ेगा। असिस्टेंट कोच मिले यदनाक ने कहा है कि टीम का पूरा ध्यान इजिप्ट पर है, ना कि इस बात पर कि स्टार स्ट्राइकर मोहम्मद सुलह अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी से समय पर रिकवर करते हैं या नहीं।
2: They have threats all over the park. That's what they do. They've got guys who are playing at a very high level, and you mentioned one who's done it for a very long time. There are others in there that also are doing the job and doing the business at club level and also for the national team. So it's probably more of a collective approach, I'd say, from our perspective.
1: Socceroos ka mukabla shanivar subah Egypt se hoga aur iska live broadcast subah 3 baje se SBS aur SBS On Demand par shuru hoga. शुक्रवार को फीफा वर्ल्ड कप के 22वें दिन स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, पोर्चुगल की टक्कर क्रोएशिया से और स्विट्जरलैंड का सामना अल्जीरिया से होगा। आपने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 21वें दिन का वर्ल्ड कप डेली अपडेट सुना। मैं हूं नबील हसन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हर पल को SBS और SBS ऑन डिमांड पर लाइव और फ्री देखें।
0: तो दोस्तों, यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, लौट कर आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहें SBS हिंदी।
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
5: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
4: Savvy, Steven.
5: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
4: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
6: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो वक्त हो रहा है 5:13 और ब्रेक से पहले हमने नज़र डाली थी आज की खबरों पर, और फीफा डे 21 यानी 21st डे का पूरा अपडेट हम आप तक लेकर आए थे। वैसे तो मैं जानती हूँ कि मेरा कोई भी कार्यक्रम आप मिस नहीं करते हैं और हर शाम 5 बजे आप हमारे साथ जुड़ते ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप आज के कार्यक्रम में हमारे साथ ज़रा देरी से जुड़ रहे हैं तो आपको बता दूं कि आप SBS हिंदी की वेबसाइट यानी sbs.com.au/hindi पर जाकर और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर जाकर ये सभी कार्यक्रम और अंश फिर से सुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस हफ्ते के ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड में क्या है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऑस्ट्रेलिया में 3 झंडे क्यों हैं? हरा, नीला, काला और सफ़ेद झंडा क्या दर्शाता है? आइए ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के संश में अनीता बरार के साथ जानते हैं कि ये झंडे किसके हैं और क्या दर्शाते हैं।
9: आप सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड, SBS ऑडियो पॉडकास्ट जो आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने के तरीके में मदद करता है। ऑस्ट्रेलिया में आपको एक साथ 3 झंडे लहराते हुए दिख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन नेशनल फ्लैग, एबोरिजिनल फ्लैग और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर फ्लैग। ऑस्ट्रेलिया में 3 झंडे क्यों हैं? इसका जवाब ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट नेशंस के लोगों से शुरू होता है। एबोरिजिनल लोग और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर ऑस्ट्रेलिया के 2 अलग-अलग इंडिजिनस लोग हैं, जिनमें से हर एक का अपना इतिहास, संस्कृति, भाषा और झंडा है। टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर झंडा हरा, नीला, काला और सफ़ेद है। इसमें एक सफ़ेद पारंपरिक हेडड्रेस है जिसे दारी के नाम से जाना जाता है, और इसके बीच में एक सफ़ेद स्टार है। ये झंडा टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों और ज़मीन, समुद्र, संस्कृति और समुदाय से उनके संबंध को दिखाता है। कई टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए ये झंडा पहचान और अपनेपन का एक शक्तिशाली चिन्ह है, चाहे वे आइलैंड पर हों, मेनलैंड में हों या विदेश में रहते हों। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के इस अंश में समझते हैं कि झंडा इतने सारे लोगों के लिए इतना मायने क्यों रखता है। SBS हिंदी पर मैं हूं अनीता बरार। टॉरेस स्ट्रेट आइलैंड्स क्वींसलैंड में केप यॉर्क के सिरे और पपुआ नई गिनी के बीच आइलैंड्स का एक ग्रुप है। ये आइलैंड्स ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों का घर है, जिनकी अलग अलग संस्कृतियां, इतिहास और भाषाएं हैं। 1992 में आइलैंड कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ने टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए एक कम्युनिटी झंडा डिज़ाइन करने के लिए एक कॉम्पिटिशन रखा था। जीतने वाला डिज़ाइन थर्सडे आइलैंड के अंकल बर्नार्ड नामोक ने बनाया था। इससे पहले कि उनका डिज़ाइन इतना महत्वपूर्ण चिन्ह बन जाता, कंपटीशन के कुछ समय बाद ही अंकल बर्नार्ड की मृत्यु हो गई। उनके बेटे बर्नार्ड नामोक जूनियर के लिए ये झंडा उनके पिता के साथ उनके संबंध को जिंदा रखता है। जब वो इसे देखते हैं तो उन्हें अपना बचपन और अपने पिता को ड्राइंग करते हुए देखने में बिताई गई रातें याद आती हैं। झंडे पर हर रंग और चिन्ह का एक मतलब होता है। हरा रंग
10: जमीन को दिखाता है। नीला रंग टॉरस स्ट्रेट के पानी को, काला रंग टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों को और सफ़ेद दारी टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर संस्कृति की पहचान को दिखाता है। जबकि सफ़ेद पांच नुकीला तारा टॉरस स्ट्रेट के पांच मुख्य आइलैंड ग्रुप को दिखाता है। आदिवासी और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लॉ स्टूडेंट टॉयरल विटी का जन्म और पालन पोषण थर्सडे आइलैंड में हुआ और अब वो क्वींसलैंड के टाउन्सविल में रहते हैं। उनका कहना है कि ये झंडा टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर समुदाय, संस्कृति और लोगों को दिखाता है।
11: The Torres, like, I feel like it's a part of our cultural identity in itself. It's a big part of our story. It's really good to have that sense of representation too. And especially being in a small community, you see this flag. It tells a story, who we are, where we're going, and how we're moving forward past all the injustices since colonization. Our people were considered flora and fauna and not as people. So for me, this flag speaks for itself. It's something to make me feel seen as a person because it's representing my people.
10: Bernard Jr. और Tyrell दोनों ही थर्सडे आइलैंड पर पले बड़े, जिसे वे परिवार और संस्कृति से भरा एक छोटा लेकिन व्यस्त समुदाय बताते हैं। Tyrell के लिए झंडा रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है।
11: Seeing flags in places such as courtrooms and just everyday places up in the mainland, it just makes me feel so seen. Where I can come from a small island off the mainland, but entering mainland, seeing my flag in a courtroom, seeing my flag wrapped up your local post office, seeing some people wearing it on their clothing, it makes me feel like people up here in the mainland have so much love and respect for us up there. It just makes us all feel a part of Australia and all that, and how we're all connected and trying to move forward as one.
10: Bernard Jr. को याद है कि झंडे को बड़े पैमाने पर पहचान मिलने से पहले जीवन कैसा था। उन्होंने 1990 के दशक में प्रतियोगिता के बाद इसे धीरे धीरे द्वीपों में फैलते हुए देखा। आज टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर का झंडा पूरे ऑस्ट्रेलिया में फहराया जाता है। आप इसे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, संसद, स्थानीय काउंसिल्स और अदालतों के बाहर देख सकते हैं। ये अक्सर आदिवासी और ऑस्ट्रेलियाई झंडे के साथ लहराता है। Tyrell के लिए, जो केन्स में व्यवसाय और कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, ये एक शक्तिशाली दृश्य बनता है। Bernard Jr. ने घर से बहुत दूर भी टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर का झंडा देखा है। वो अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैरिंग द फ्लैग के लिए विदेशों के फेस्टिवल्स में गए और लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में ऑस्ट्रेलियन दूतावास में ये झंडा देखा है। वो कहते हैं कि हर बार ये झंडा उन्हें थर्सडे आइलैंड पर एक बच्चे के रूप में वापस ले जाता है, जहां वो अपने पिता को डिजाइंस पर काम करते हुए देखते हैं।
12: No matter where I am, when I see the flag, I see my childhood growing up on the island and overlooking my dad's shoulder doing all them sketches. And even when I took the documentary over to Canada and the flag was flying there, it took me back to Australia and I didn't even think that I was in another part of the world. I just remembered my childhood and then I snapped into reality and I was, oh, that's right, I'm in another country. So that's the feeling that I have every time I see the flag.
10: Bernard Jr. चाहते हैं कि बच्चे बड़े होकर टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर झंडे के पीछे की कहानी जाने। उन्होंने थॉमस मेयो के साथ मिलकर बच्चों की किताब आवर फ्लैग आवर स्टोरी लिखी है, जिसे टोरी डे मार्ड ने इलस्ट्रेट किया है।
12: I've had a lot of readings at schools, especially around Reconciliation Week and NAIDOC, and all the comments that I have from the teachers and the school support workers was the kids really enjoy reading the book.
10: तो जब आप टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर का झंडा देखते हैं तो आप जमीन, समुद्र और लोगों की जीती जागती निशानी देख रहे होते हैं। ये उन संस्कृतियों को दिखाता है जो टॉरस स्ट्रेट और पूरे ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर में फल फूल रही है। Tyrell के लिए ये झंडा अतीत और वर्तमान की कहानी कहता है, लेकिन ये भविष्य की कहानियों को भी प्रेरित करता है।
11: It's good that we have a flag dedicated and designed by us for us to motivate us to continue our journey and move forward so that we are having pride and acknowledging our cultural identity.
9: ये एक SBS audio podcast था। Australia Explained के और दूसरे podcasts के लिए sbs.com.au/australiaexplained पर जाएं।
8: तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस अंश से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, और ये बात मुझे भी इतनी गहराई से नहीं पता थी जो आज मुझे इस अंश के माध्यम से पता चली है। तो चलिए, आप मुझे अपने संदेश भेजते रहें 0439799767 पर, और बताते चलें कि आज के कार्यक्रम में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और जब तक आपके संदेश मेरे पास आ रहे हैं, सोच रही हूँ कि आपको एक बढ़िया सा गाना सुना दूँ।

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
4: SBS आपके तैयार होते ही तैयार है। Alexa, Google Home या Apple Smart Speaker के साथ जुड़े रहना आसान है। सुनिए ताजा खबरें, विचार और कहानियां SBS हिंदी से जब चाहें। बस कहें प्ले SBS हिंदी पॉडकास्ट। SBS ऑडियो संगीत, रेडियो और पॉडकास्ट आपकी लय से मेल खाते हुए।
5: अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS लर्न में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं। SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं।
6: SBS साउथ एशियन प्लेज हिट।

0: SBS South Asian. Your news from here and hits from home.
1: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए। ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं। क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
2: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो मशहूर सितार वादक भागीरथ भट्ट और प्रसिद्ध गुजराती गायक हेमंत जोशी, जिन्हें इंडिया किंग के नाम से जाना जाता है, हाल ही में अपने लाइव संगीत कार्यक्रमों के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आए। इस खास मुलाकात में दोनों कलाकारों ने हमारे साथ अपने संगीत के सफर, पहली बार साथ काम करने के अनुभव और अपनी जुगलबंदी के पीछे की कहानी साझा की है। तो आइए सुनते हैं ये अंश।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान जो संगीत जगत से जुड़े हैं। ये दो ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से देश विदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है।
1: सियो रूपाड़ो रंग रेलियो घेर जाऊ गम तू नथी पापा सा सा सा सा सा सा रे रे नी नी सा गरे ग सा रे रे सा।
0: तो ये थे गायक हेमंत जोशी और उनके साथ ताल दे रहे थे सितार प्लेयर भागीरथ भट्ट। ये विशेष बातचीत हमने उनके ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान रिकॉर्ड की थी। तो सितार वादक भागीरथ भट्ट जी ने बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया है। वहीं हमारे दूसरे मेहमान सुप्रसिद्ध गायक हेमंत जोशी इन्हें संगीत प्रेमी प्यार से डांडिया किंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों कलाकार हाल ही में हमारे स्टूडियो आए थे और हमने उनके साथ जो खास बातचीत की वो आपके लिए पेश है।
2: SBS हिंदी प्रोग्राम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। भागीरथ जी, आप प्रसिद्ध सितार वादक हैं, आपने सितार के ज़रिए अपनी एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन उसके अलावा आपने आजकल बिग बॉस शो, रियलिटी शो के ज़रिए भी कुछ विख्याति हासिल कर ली है।
3: मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुझे ही नहीं पता ये कहाँ से ये अफवाह आई है कि बिग बॉस में मैं जाने वाला हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने कहीं कोई पॉडकास्ट में ऐसे ही पूछा गया था कि आप बिग बॉस में अगर जाना चाहे तो सितार लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे
2: जी।
3: तो मैंने ऐसे ही बोला कि यस, अगर जाना हुआ तो मैं सितार लेके ही जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे दिन रहना पड़ता है और विदाउट रियाज मैं नहीं रह सकता। तो बस वहाँ से पता नहीं कहाँ अफवाहें चली कि मैं बिग बॉस में जाने वाला हूँ, हालांकि ऐसा कोई मेरा इरादा है नहीं।
0: भागीरथ जी, आप और हेमंत जी ने गरबा और सितार का एक अनोखा संगम किया है, इसके पीछे क्या सोच रही? क्योंकि
2: सितार जो है वो बहुत ही एक मेडिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइन साउंड आती है, और जहाँ की गरबा को देखें तो एक बहुत ही कम्युनिटी ड्रिवन नृत्य है, कनेक्शंस बनाता है और बहुत ही हाई इंटेंसिटी एनर्जी है उसमें। तो दोनों को कैसे जोड़ के वो बैलेंस किस तरह बनाते हैं? भागीरथ जी, आप शुरू बताइए।
3: देखिए, मेरे ख्याल से जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो शास्त्रीय इंस्ट्रूमेंट है, बट उसमें भी राग बजने के बाद जनरली पारंपरिक तौर से एक धुन बजाई जाती थी। तो जनरली मैंने जब भी सुना तो धुन बंगाल की साइड की धुन ज़्यादा होती थी। पंडित रविशंकर जी थे
2: जी।
3: पंडित निखिल बैनर्जी
2: अच्छा,
3: थे
2: जी।
3: वो बंगाली लोग ज़्यादा सितार प्ले करते हैं, तो वहाँ से उन लोगों ने अपना फोक तो पेश किया सितार में। तो मेरे पिताजी जो कि मेरे फर्स्ट गुरु भी है, तो उन्होंने मुझे, श्री पंकज भाई भट्ट उनका नाम है, उन्होंने मुझे एक बात बताई कि बेटा हम क्यों नहीं अपना गुजराती फोक इस पे प्ले कर सकते हैं। तो शुरुआत में तो मुझे असंभव सा लगा क्योंकि किसी ने नहीं किया
2: जी।
3: तो फिर मुझे उनकी प्रेरणा से आइडिया आया और फिर हमने सितार और जिटार के माध्यम से गुजराती गरबा इस पे प्ले करने का कोशिश किया।
2: तो अपनी प्रस्तुति में आप जिटार यूज कर रहे हैं?
3: जी, क्योंकि गरबा, जिटार और सितार बेसिकली सिमिलर है, बट उसका साउंड थोड़ा थोड़ा अलग है और जिटार का साउंड थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, और गरबे में आप जानते हो कि ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, तो उसका गेन थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है।
2: तो हमारे श्रोताओं को ये बताइए, जिटार और सितार में क्या फ़र्क है?
3: एक बेसिक अंतर मैं आपको बताऊं कि सितार है भारतीय शास्त्रीय संगीत इंस्ट्रूमेंट
2: जी,
3: और जिटार काइंड ऑफ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है, विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक साउंड। यू कैन से सितार की बातें बजती है बट गिटार के टोन में, सो इट्स अ मर्जर ऑफ गिटार एंड सितार बोथ, इट्स कॉल्ड जिटार
2: जी। हेमंत जी, आप वो बैलेंस कैसे बनाते हैं? आप
4: बैलेंस अलग अलग तरीके से होता है। जैसे देखा जाए तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे आए, मैं सिंगिंग में मैं सिर्फ अकेला ही हूँ। सो जब मैं गाना गाता हूँ, जब मैं सिंग करता हूँ, तो उनके प्रत्युत्तर में जिटार आता है भागीरथ भाई का। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज तक भागीरथ भाई के अलावा मैंने किसी को नहीं देखा जो कि सितार या जितार में गरबा प्ले कर सके, क्योंकि वो भी एक होना चाहिए कि गरबा का जो पावर है, जो एनर्जी है, उस एनर्जी को भी जिटार में लाना, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये मैंने पहली बार देखा कि भागीरथ भाई जो एनर्जी मुझ में है वैसी एनर्जी वो अपने जिटार में लाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आगे जाके एक अच्छा मूड बनाता है।
2: भागीरथ जी, आपने उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान और उस्ताद असद खान जैसे महान गुरुओं से ट्रेनिंग ली है। हर गुरु की अपनी एक अलग शैली और सोच होती है, तो आपके जो आप जो प्रस्तुति बनाते हैं उसमें वो कैसे झलकती है और किसका ज़्यादा प्रभाव नज़र आता है आपको?
3: देखिए, मेरी शुरुआत तो मैंने बताया, जैसे मेरे पूज्य पिता श्री पंकज भाई भट्ट से हुई है। फिर जामनगर में रहता था गुजरात, वहाँ चेतन भाई शास्त्री करके थे, उनसे सीखा। फिर उस्ताद शाहिद परवेज जी से सीखा, उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब से भी मुझे सीखने का अवसर मिला, अभी उस्ताद असद खान साहब से सीख रहा हूँ। सो इतने गुरुजनों का नाम लेने का यही तात्पर्य है कि सब अलग अलग घराने से बिलोंग करते हैं। सो कोई मुझे पूछता है कि आपकी शैली कौन सी है
2: जी।
3: तो मैं कभी कभी मजाक में बोलता हूँ, मेरा घराना है गुलदस्ता घराना।
2: अच्छा।
3: जिसमें हर एक रंग का अलग अलग फूल है। तो देखिए, वो अलग अलग लोगों से, अलग अलग गुरुजनों से ट्रेनिंग लेने से, सीखने से मुझे ये प्राप्त हुआ कि मैं अलग अलग रचनाएं, जैसे अभी फोक भी बजा रहा हूँ मैं, फ्यूजन भी बजा रहा हूँ, बॉलीवुड भी बजा रहा हूँ। तो ये सारी बातें इसीलिए बन रही है कि अलग अलग गुरुजनों से मैंने सीखा, और अभी जहाँ सीख रहा हूँ मेवाती घराना उस्ताद असद खान साहब, तो उसमें उसके जो पूर्वज हुए उस्ताद रईस खान साहब, उन्होंने तो बाकायदा मदन मोहन साहब के साथ बहुत सारी फिल्मों में सितार बजाया है, और उनके पीस अभी तक सब लोग फॉलो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब वो घराना बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है। तो हर एक फूल मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ से ये बजाऊँ, यहाँ से वो बजाऊँ
2: जी।
3: तो इस तरीके से मैंने अप्लाई किया है अपने।
2: लेकिन आपका जो सितार का करियर है वो हॉलीवुड से शुरू हुआ तो वो कैसे शुरू हुआ, वहाँ आप कैसे पहुँचे?
3: देखिए, मैं जब जामनगर रहता था तो अमेरिकन गांधी करके एक मूवी आया था हॉलीवुड से, तो उसमें उनको लगा कि इंडियन कल्चर दिखाना है, इंडियन ट्रेडिशन दिखाना है। तो हमारे राजकोट के म्यूज़िक डायरेक्टर थे उसमें, जिन्होंने BGM भी किया, आई थिंक म्यूज़िक भी उनका है
2: जी।
3: तो उन्होंने देखा कि अपने आसपास में कौन अच्छा कर रहा है सितार, तो उनके पास मेरा नाम पहुंचा होगा। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और हम लोगों ने फिर कोलाबरेट करके ये मूवी के लिए अपना योगदान दिया सितार का।
2: तो आप अवतार में?
3: हाँ, अवतार द लास्ट एयरबेंडर करके एक नेटफ्लिक्स का वेब सीरीज है, उसमें भी मैंने प्ले किया है।
2: और बॉलीवुड की साइड में आपने हीरा मंडी में दिया है,
3: बंसाली साहब के साथ तो ऑलमोस्ट मैं जुड़ा हुआ हूँ,
2: AR रहमान के साथ भी आपने काम किया
3: जी,
2: है
3: जी, जी।
2: और आप लाइव परफॉर्मेंसेस भी करते हैं, स्टूडियो परफॉर्मेंस भी करते हैं, तो सबसे डिफिकल्ट कौन सी परफॉर्मेंस होती है?
3: देखिए, मैं क्रिकेट लवर हूं तो उसकी परिभाषा में आपको बताऊंगा कि T20 का अलग मज़ा है, वनडे का अलग मज़ा है, टेस्ट मैच का अलग मज़ा है। तो कौन सा डिफ़िकल्ट है वो नहीं बता सकते, बट हर एक चीज़ में एक ही रूल फॉलो नहीं कर सकते। स्टूडियो लाइन इज समथिंग डिफरेंट। गुरुजनों से सीख के मैंने स्टूडियो में अप्लाई अलग किया, क्लासिकल में अलग अप्लाई किया, अभी जो हेमंत जी के साथ में जो परफॉर्म करूँगा वो अलग एप्लीकेशन है। सो हर एक का अलग रंग है, बट पर्सनली अगर मुझे पूछा जाए तो मुझे बेहतर लगता है रिकॉर्डिंग्स बजाना, क्योंकि अच्छा, उसमें आप अगर 100 है तो यू हैव टू बी 150, क्योंकि आपको रीटेक्स बहुत मिलते हैं, बट आपको अपनी जो कला है वो उससे भी ऊपर आके कुछ अलग बजाना है। और दूसरा कि हम जो लाइव शो करते हैं वो बजाने के बाद लोग भूल के चले जाते हैं अपने घर, बट रिकॉर्डिंग जो है, अभी हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम नहीं रहेंगे पर ये पॉडकास्ट रहेगा जरूर। सो वो चीज़ मुझे ज़्यादा आकर्षित करती है कि वो लाइफ लॉन्ग है।

0: तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जो बातचीत थी पसंद आई होगी, लेकिन कहीं मत जाइएगा, एक और बहुत ही बढ़िया सा साक्षात्कार आपके लिए लेकर आऊंगी ब्रेक के उस पार, और साथ ही होंगे कुछ बढ़िया से गाने। सुनते रहें SBS हिंदी।
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
0: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका SBS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो प्रतिभा राय भारत की सबसे प्रतिष्ठित समकालीन लेखिकाओं में से एक है, जो ओडिशा से आती हैं। 80 वर्ष की उम्र में भी अपने लेखन से साहित्य जगत को रोशन करने वाली प्रतिभा जी की साहित्यिक आवाज़ क्षेत्रीय सीमाओं से कहीं आगे तक गूंजती है। उनका चर्चित उपन्यास यज्ञसेनी महाभारत का द्रौपदी के दृष्टिकोण से पुनः प्रस्तुत करता हुआ एक रूप है, जो इस महाकाव्य को एक सशक्त और संवेदनशील स्त्री केंद्रित दृष्टि प्रदान करता है। आइए इस अंश में जानते हैं कि कैसे वे लैंगिकता, पावर, महिला लेखकों, आज़ादी एवं सामाजिक असमानता जैसे प्रश्नों पर अपने विचार साझा करती हैं और बताती हैं कि कैसे बदलाव जो होता है वो घर से ही शुरू होता है। आपको बता दूं कि ये बातचीत काठमांडू में आयोजित कलिंग साहित्य महोत्सव के दौरान रिकॉर्ड की गई, जिसमें प्रतिभा राय ने SBS नेपाली की संवाददाता सेवा भट्टराय से बात की और इस साक्षात्कार को SBS हिंदी के लिए आपके लिए रूपांतरित किया गया है। तो आइए सुनते हैं। महिला सशक्तिकरण, फेमिनिज्म या फीमेल एम्पावरमेंट, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता आया है। ओडिशा की सुप्रसिद्ध लेखिका प्रतिभा राय साहित्य जगत का एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज के कई महत्वपूर्ण सवालों को आवाज दी है। हाल ही में उनकी उड़िया भाषा में लिखी गई 25वीं किताब प्रकाशित हुई है। उनकी रचनाओं का अनुवाद दुनिया की 30 से अधिक भाषाओं में किया जा चुका है। आपको बता दूं कि उनकी सबसे चर्चित कृतियों में से एक है याज्ञसेनी, जिसमें उन्होंने महाभारत की कहानी को द्रौपदी की नज़र से प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास के माध्यम से उन्होंने न केवल इतिहास को एक नया दृष्टिकोण दिया, बल्कि महिलाओं और समाज के हाशिए पर खड़े समुदायों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ भी सशक्त आवाज उठाई। 80 वर्ष से अधिक आयु की प्रतिभा राय को भारत के कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है, जिनमें मूर्ति देवी पुरस्कार और पद्मश्री जैसे सम्मान भी शामिल हैं। हाल ही में वे नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित कलिंग साहित्य महोत्सव, जो 6 और 7 जून को आयोजित हुआ था, में भाग लेने पहुंची। इसी अवसर पर SBS नेपाली की पत्रकार सेवा भट्टराय ने उनसे विशेष बातचीत की, जिसे हम SBS हिंदी में अब आप तक लेकर आ रहे हैं। हमने पहला सवाल उनसे पूछा कि जहां पहले के समय में महिलाओं को पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, ऐसे में आपके लिए शिक्षा प्राप्त करने का सफर कैसा रहा?
7: My father was an educationist. He was a very modern man, much ahead of his time he was. And his name is Parashuram Das. And he dreamt me to be a doctor, physician. But I didn't like. Without letting know my father that I am not reading medical, I changed my career. I again came back to Ravenshaw College. And my subject was botany honors.
0: वो लिखने के पीछे अपनी रुचि के बारे में हमसे साझा करती हैं।
7: I started writing in my childhood when I was a small child. छोटी छोटी कविता लिखती थी, उद्वेलित हो जाती थी जब देखती हूँ सुंदर कुछ देखती हूँ, कोई दुख की बात देखती हूँ तो भी मेरे अंदर में बहुत डिस्टर्बेंस होता है, तो वो जो डिस्टर्बेंस और उद्वेलन होता है ना, वही लिखाता है, तो मैं कुछ लिख देती हूँ और वो कविता बन जाती है।
0: वे बताती हैं कि इस समय में भी क्यों प्राचीन कहानियाँ और पौराणिक कथाएं बिल्कुल रेलेवेंट यानी प्रासंगिक हैं। साथ ही वे अपनी किताब यज्ञ सैनी के बारे में भी बताती हैं, जो कई सारी भाषाओं में अनुवादित है।
7: जब मैं इसको लिखी, ये प्राचीन नहीं रहा, ये प्राचीन नहीं रखा। एक महिला को जो सिचुएशन में डाला गया उस समय, ये बहुत गंदी बात है। और ऐसा सिचुएशन में कभी भी किसी समय में भी कोई भी महिला को डालना नहीं चाहिए, ये मेरा प्रतिवाद था। इट वॉज ए रिवेल, सो एवरी राइटर इज ए रिवेल एंड रिवोल्ट्स, एंड द्रौपदी इज नॉट ए वेरी वीक पर्सन, इज ए वेरी स्ट्रांग पर्सन।
0: हमने उनसे पूछा कि अक्सर ऐसा होता है कि पुरुषों द्वारा महाभारत के बारे में कुछ भी लिखा जाना इस बात को संकेत देता है कि इस युद्ध के पीछे का जो कारण है वो द्रौपदी थी। वहीं दूसरी तरफ उनकी पुस्तक में इसके विपरीत एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया गया है। इसके पीछे की वजह क्या है?
7: व्यास द्रौपदी को दोष देते हैं कि द्रौपदी के लिए महाभारत हुआ। इसके विरोध जाकर मैं उसको दिखाना चाहती हूँ कि द्रौपदी इज नॉट द रीजन फॉर महाभारत, द रीजन इज द लास्ट ऑफ द मैन। हिंदू मिथक और कथाओं में महिला को देवी बना के दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफ में उनको दासी बना के रखते हैं। इसके विरोध में मैं लिखती हूँ।
0: इतिहास और पौराणिक कथाओं में महिलाओं की जो छवि बनाई गई है उसको बेहतर करने के लिए आज हम क्या कर सकते हैं?
7: यू आर ए ह्यूमन बींग, तो वो जो महिला का जो ये पहना दिया गया है इसको उतार देना चाहिए। यू आर ए ह्यूमन बींग एंड You try to be good human being. To become a good human being is should be the aim of every human being. इसमें महिला पुरुष की कोई बात नहीं है, और महिला को जो अन्याय अत्याचार होता है इसको प्रतिबद्ध करना चाहिए।
0: अक्सर महिलाएं जो होती हैं वो प्रेम या अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं लिखती हैं। जब भी वो लिखती हैं तो उन्हें एक बहुत ही अलग दृष्टि से देखा जाता है।
7: महिला प्रेम करने से वो महिला खराब हो गया, चरित्र खराब हो गया है। महिला का चरित्र इतना ये है कि नाजुक है कि इसमें बातों में इसमें दाग लग जाता है। इसको पूरा हमको बदल देना चाहिए। प्रेम तो सोर्स स्पॉन्टेनियस प्रेम भावना महिलाओं को मन भी आता है, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। जो इटर्नल वैल्यूज है हमारा, इसको ह्यूमन वैल्यूज इसको रख के हमको ह्यूमन बींग बनना है।
0: अक्सर आपकी किताबों में देखा जाता है कि जिस तरह से आप महिलाओं का चित्रण करती हैं उसमें एक कटाक्ष है, तो ऐसी लेखनी के पीछे का कारण क्या है?
7: मैं लिटरेचर नहीं पढ़ा है, मेरा सब्जेक्ट तो साइंस था, मैं साइंस बैकग्राउंड का है, लेकिन मैं लिखती हूँ इसके कोई बात नहीं। एक राइटर लिटरेचर पढ़ने के बाद राइटर होगा ऐसा कोई ये नहीं है, वो अंदर से आता है। और वो जो भाषा के बारे में आई डोंट नो, आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट लैंग्वेज। व्हेरेवर आई गो आई लिसन केयरफुली क्या नया लैंग्वेज बोलते हैं, क्या नया तरीके से बोलते हैं, मैं इसको पकड़ लेती हूँ। और आपको उपन्यास में जो चरित्र होते हैं ना, मुझे बोलते हैं आपका भाषा ऐसा है, मैंने बोला मेरी भाषा नहीं है, ये चरित्र की भाषा है। आप जो चरित्र बनाएंगे उसकी भाषा लिखना चाहिए, जो समय की बात करते हैं उसी समय की भाषा लिखना चाहिए। अनुवादक इज ए ब्रिज, देयर शुड बी ब्रिज बिटवीन लैंग्वेजेस बिकॉज सो मेनी लैंग्वेजेस आर देयर, but the essence of any literature is the same, human values, love, compassion, So therefore, translation is a very major thing during this time. And translation को जितना ध्यान देना चाहिए, मर्यादा जानना चाहिए, ऐसा नहीं होता है. ट्रांसलेशन होना चाहिए.
0: ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो लिखना चाहती हैं, लेकिन लिखने के लिए वक्त निकालना काफी मुश्किल हो जाता है. उनको आप क्या कहना चाहेंगी?
7: कठिन तो डेफिनेटली कठिन है. इसके बाद मैं नौकरी भी किया ना, फुल टाइम नौकरी भी किया 35 years. तो पढ़ाती थी 3 बच्चे. और हमारे जो सोसाइटी है, घर में पुरुष लोग सिर्फ अर्न करके पैसा दे देते हैं, इतना ही उनकी भूमिका है. एक महिला सब कुछ करती है. और इफ यू आर एजुकेटेड मदर, यू हैव टू डू एवरीथिंग. इवन कैरियर क्या होगा, बच्चों का कौन सा कॉलेज में पढ़ेंगे, कैसे एडमिशन होगा, ये सब तो मुझे करना पड़ा है. तो मेरा जो पर्सनल टाइम है ये 11 के बाद है. बच्चे सो जाते हैं, घर काम खत्म हो जाता है, कल सुबह क्या ब्रेकफास्ट होगा, क्या होगा, सब तय हो जाता है. तो मैं शांत हो जाती हूँ. उस समय मेरे जो चरित्र है ना, वो मुझे गिरते हैं, वो घेराव करते हैं, बोलते हैं हमारे बारे में थोड़ा सोचो.
0: इस काम के एक्स्ट्रा लोड को हम महिलाओं के लिए किस तरह से कम कर सकते हैं?
7: ओनली थिंग शेयरिंग. वो शेयरिंग होना चाहिए. और हम जो बेटे को इसी के मुताबिक गढ़ना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए बचपन से. बेटा बेटी घर में है, बेटी करेगी, बेटा नहीं करेगा, ये जो हमारा आज तक भी चल रहा है इसको बदलना चाहिए. बेटों को भी घर का काम करना चाहिए. नहीं, महिलाएं लिखते हैं आजकल भारत में, महिलाएं लिखते हैं और इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर भी लिखते हैं. लेकिन एक बात है, अब देखिए द रेशियो ऑफ महिला लेखन और पुरुष लेखन. व्हाई? महिला आर ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी. बचपन से बेटा बेटी को एक साथ एक ही ट्रेनिंग दे के बढ़ाना चाहिए. स्मूथ लाइफ विल नॉट मेक यू ए राइटर. ए डिस्टर्ब लाइफ, डिस्टर्बेंस, उद्वेलन, ये सब आपको लिखाएगा. कौन क्या बोलेगा, कौन क्रिटिसाइज कर देगा, बोलेगा नहीं अच्छा नहीं हुआ, डोंट केयर, इट इज योर एक्सप्रेशन.
0: SBS नेपाली की संवाददाता सेवा भट्टराय के सहयोग से तैयार की गई ये खबर SBS हिंदी के लिए आप तक लेकर आई भव्या पांडे.

दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये साक्षात्कार सुन के अच्छा लगा होगा। मुझे इस साक्षात्कार पर काम करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और बिल्कुल जैसा कि एक गाना है कि दिल तो बच्चा है जी, कुछ भी करने की कोई उम्र नहीं होती है, और प्रतिभा जी ने ये साबित कर दिया है। तो आप ज़रूर बताएं मुझे अपने संदेशों के माध्यम से कि ये अंश आपको कैसा लगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि आज की शाम मुझे एक ही संदेश आया है चेतन शाह जी की ओर से, जो कि सिडनी से हमें लिख रहे हैं। हाय भव्या, आई लव योर मॉडेस्टी अबाउट द टॉरेस स्ट्रेट आइलैंड फ्लैग। आई नेवर न्यू अबाउट द डिज़ाइनर बर्नार्ड नामोक इन 1992 ईदर। कीप अप द गुड वर्क, ये लिखा है चेतन जी ने। साथ ही लिखते हैं कि उनके स्कूल में उनके हिंदी टीचर का नाम भी मिस्टर पांडे जी था। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई मुझे ये सुन के। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं ये, और जब से जो दबंग फिल्म है वो आई है, मुझे मेरे स्कूल टाइम पे काफ़ी चिढ़ाया जाता था इस नाम से, लेकिन फिलहाल मुझे खैर ये नाम पसंद है, मेरा नाम है, तो जैसे भी आप बुलाना चाहें। चलिए ये गाना सुनिए और आज की शाम को एंजॉय करें।

के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

घर कैसे जाएंगे। रात से हो गया दिन, पी के वोडका कोलाजिन, बेबी बॉडी को कर ले स्पिन, जैसे मछली तड़पे पानी बिन, तिनक तिनक धिन।

0: हार के वो जा रहा है कोई शबगम गुजर, वीरा है मैं कदा खुम सागर उदास, तुम क्या गए के रूठ गए दिन बहार।
1: Subscribe to SBS South Asian on YouTube to see our latest content.

0: से झनकार से है दिल के तार में तब से।
1: SBS South Asian, your news from here and hits from home.

0: Your news from here and hits from home.
1: SBS South Asian.
2: बहुत गौर से सुनिए आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये एक अतरंगी भूत की कहानी। कभी नहीं सुनेगी आप ऐसे कहानी। नामों के पीछे तो ये भूत उसके बीच